शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो पावे है मेरे हर भगत।

आज संध्या दे दीवाना देवी जी जेठ का महीना सुखां भरिया व्यतीत होया, चढ़िया असाड़ तपंदा, असाड़ का महीना चढ़िया है, सतगुरु जी कृपा करन चढ़िया महीना साडा सारिया का सुखां भरिया व्यतीत होवे, ते नाल नाल मानयोग भाई ओंकार सिंह जी उन्हां साहब वाले तिना दी बच्ची एक स्कोर का जन्म दिहाड़ा भी है, असीस दे सबद बच्ची नूं असीसां प्रदान करदे हां। आओ मिलके बाणी दे नाल जुड़ना करिए।

एक चले मूल गवाए, थोड़ा किन्ह ना मंगेओ, किस कहिए साबास, नजर तिना कौ नानका, जे साबत लाए रास। महला पहला, जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े,

सब करना किरत कर लखी लिखी है, कार कार करता करे करे, मनमुख मरी है गुरमुख तरी है, नानक नदर नदरी नदर करे पौड़ी, मनमुख दूजा भरम है, दूजे लोभाया, कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया, उत्तर कलत्तर मोहित है, सब दुख सबाया,

0: सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: सतनाम

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਸਰਬ ਕੀ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨੰਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੋ ਹੂਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਾਨ ਸਰਣੀ ਪਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੂਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿੱਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੂ ਨਾ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ ਜਹਿ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜ ਅਕਰਖੈ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਵੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੇ ਨਾ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ਪੋਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ
संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य क्रिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पून दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमै कर राती, वरत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड प्रथमी फिर चैर जीव महा उदास तपी सरथी वै, अगन माहे होमत प्राण, कनक अशव है वर भूम दान, नेवली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, नेमख निमुख कर शरीर कटावे, तौ भी होमै मैल न जावे, हर के नाम संसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान ना मनते हुटै, सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै, जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर की नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पतत बहु मूच, बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै, भेख अनेक अगन नहीं पूजै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै, छूट सनाही ऊप पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बूलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै, जे को आपो ना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए होमै शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा, जा का मान होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट जीना, मन आपो ने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन साम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर तन को धन तेरो नाऊ, निथावे को नाऊ तेरा थाओ, निमाने कहो प्रभ तेरो मान, सगल कटा कहो देवहु दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपने गात मित जानहु आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम में उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार अन्या सो प्रभ सदा समाल, जिन किया ते सचीत रख नानक निभि नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, बार बिवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख्य प्याओ बैठ कौ दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूजै, बख्श लिहो तौ नानक सीजै, जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सुत भरात मीत बंता संग हसै, जिह प्रसाद पीवै सीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जिह प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समगरी संग साथ बसा, दीने हस्त पाप करन नेतर रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ लेहो प्रभ आपे, आद अंत जो रखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निध पावै, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगह मान, तिसे बिसारे मुगद अजान, सदा सदा ए भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका शरम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर तब प्रीत भस्म संग होए,
ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਪੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਪਸ਼ ਨਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੁ ਊੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੂਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੂਰਾ। ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋ। ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਹਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ। ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗ ਹੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤੁ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰ ਲੇ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮ ਸੁਕਾਰਾ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਸ਼ ਬਹੁਰ ਸਾਹੁ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰਸ ਕਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਉਸਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪ੍ਰਹੁਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਬਿਰਕ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨ ਸਹਿ ਉਹ ਮਨ ਪਛੁਤਾਵੈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਦੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾ ਕਉ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇਹੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਾਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰਤਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਾਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਖ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਹੇ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਨਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਾਸ਼ ਅਵਰ ਕੁਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਓਨ ਜਾਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਐ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ।
सो सेवको जिस कृपा करी नेमक नेमक जापो नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहं मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परमगत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर साका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत तरगै मान पावै नानक पाथ सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भागत करे हे जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साधत सहत आई तिस है त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जिह प्रसाद कर है पुन बहु दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नेकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जा सका है जिह प्रसाद सुने करण नाद जिह प्रसाद पिखै बिसमाद जिह प्रसाद बोले अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परमगत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कतला गहो गुर प्रसाद नानक मन जागो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावहो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की आचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब हुतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हुतावै साध संग आस थे तो मन पावै साध कै संग माया ते भिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस से नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बाना आई
साधक संग न कबहू तावै, साधक संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजार सहै, साधक संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान, साधक संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निसतारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सरब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध कै संग गुलुकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा उहा सोहिला, साध संग बिशुरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्याना है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, आवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप, जैसे जल मैं कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथियन जय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी सलोक, पुर धार जो अंतर नाम, सर्व में पिख भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल ने सतार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस, पर त्रय रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बासना मन ते तरै, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवै निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं पाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सुखम मैं जाने असथूल, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, चौ वर्णा मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगद पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत पितना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै प्रवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाऊ, अपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरियो आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, सलोक उस्तत कर है अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार, कई कोट कब का विचार, कई कोट नावतन नाम त्या वह, नानक करते का अंत न पावह, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेगो आत्म निकोर, कई कोट पर दर्व को हिरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र,
ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸ ਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚੈਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇ ਨ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸਦਾ ਧਾਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪੋ ਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵਰ ਨ ਆਵੈ ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੇ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦੇ ਸਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਉਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕੇ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਬੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੁਨ ਭਰ ਮੈਂ ਪਰਮੀਆ ਮਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
ਕਬ ਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮ ਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰ ਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ। ਬਹੁ ਲਸ ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਪੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰ ਥਾਰੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਿੰਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪ ਸਕਾਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕਿਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੁਟੈ। ਸਾਹਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਕੇ ਹਾਸ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕੇ ਸ਼ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਵੇਕ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਗਿਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਬਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ। ਆਪੁਨੇ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲਾ ਚੀਨਾ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਣ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਈ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਪਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗਜਿਉ ਲਵੈ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤਿਰਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਂ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਥਾਂ ਓਏ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ।
संत का निंदक महा आतताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया आरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावैता उसका पी हो मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते तरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थो था, जो सास बिना मृत पीलो था, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लए उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ आए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रहपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस पावै सोई खया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न त्रष्टे कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पाया किरत न मेटे कोई, नानक जाने सचा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तुत करो दिन रात, तिस त्यावो सास गिरास, सब कुछ वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बटपागी नानक जन से, सलोक तज हो सियानप सुरजनौ, सिमरौ हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक ब्रथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लगे आए, मारे रखे एक आप, मानुख कह किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत ब्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, ननहु पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करहे विचार, से तनवंत गने संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछान है, ए तो तकियो सो जी जान है, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन है निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख, जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया, जब देखाओ तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुगत राच्य, थाप उथाप
अभिनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेलय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पावै बिसराम नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसाए हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणे हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उनहु बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जान एको जान सलोक सर्ब कला भर पूर प्रभ बिरथा जानन हार जग सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय तिस बिन नाही तेरै किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किश तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बहे दातार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंदर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बेल लाइय पुरब लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काश करै सोई सुख मान भूला काहे फिरया जान कौन बस्त आई तेरै संग लपट रहे रास लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पात से ती घर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहु मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद के बसंत संग चाल अवर त्याग बिखिया जान जाल धन धन कहे सब कोय मुख उजल हर दर कह सोए ए वपार विरला वपार है नानक ता कहे सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो सुनान साधु प्रजाइए कुर्बान साध सेवा बड़भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै कोट गही संत दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया मृतक को जी वालन हार भूखे को देवता आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लेखे का लहना पाहे सब किश तिसका ओ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिय तेह लोए जाके हृदय एक होए सच करणी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृष्ट सचा आकार सच वरत सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशो त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस हो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन में राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिसके परे नाही किश कोए सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्संद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मान एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र होर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान तिहान जिन दे जानदास नाम ध्यावै से
तेहो गुण में जाकू परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना भेद कीनो बिसथार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे पूरण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणे निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जा कर दे प्रवेश सत निरत बूजा जे कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिस की श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत बीचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिसमन बिसम पय बिसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुरु कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सुवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुग आद सच हाय पी सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन सिन मूल पछाण्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ता कौ भिन न कहना जाई बूझे बूझन हर बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक ही राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख है ताकि गत में तो कोई ना लख है प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म कर लस्कर कोट लख है जिसका सास न काटत आप ताको राखत देख रहात मानस जतन करत बह भांत तिसके करत ब्रथे जात मारे न रखे अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारं बार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहो मन तन त्रपी है नाम रतन जिन गुरुमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्ट आया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करै भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने सिउ रहे सुमाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने
तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक ना जानो। आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। मन मेरे तिन कियो टले, मन तन अपना तिन जान दे। जिन जन अपना प्रभु प्रशाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिस की शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै। अवर स्यान पसगली शाड, तिस जन की तो सेवा लाग। आवन जाना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो साध पैरा। सलोक सात पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ। तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्ट

निर्भव जप सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोए न पहुचन हार सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाति दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक

ओत पोत गुर प्रसाद परम का नासो नानक तिन मैं एहो बिसासो संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनै शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे बिस्थारो तिस भावे ता एकंकार अनक कला।

अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखन हारा। सगल समगरी जाका तना, आपन जासो आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मध अलिप तो रह, जो किश कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले समाए। इस ते होए सुनाही बुरा, उरे कहो किने काश करा। आप भला कर तू तो आतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का है सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक।

दुख भंजन पूरण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत हो तो उदार, आप तरह लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महा तो कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। सारन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भये गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निब ही खेप हमारी। प्रभ के उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, परधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहुर न होवै आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै परापत होए। खेम सांत रिद नवनित, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए। जिस

नानक एह गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

की वह जानिए सब पिसचियार थापिया न जाए कीता न हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गावी है गुण निदान गावी है सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाय करी जेती सिरट उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी

नानक निर्गुण गुण करे गुणमंतया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश।

जिकु कहे पिछे पछुताए। कागद कलम न लिखन हारु, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पद स्यो प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सिति संबंध। ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मुक द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पव है न भिख। ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए। पंच प्रवाण पंच प्रधान, पंचे पाव है दर गहमान। पंचे सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जिको कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। ताओल धर्म दया का पूत, संतोख ताप रखिया जिन सूत। जिको बुझे हुए सुचियार, तबले

सेवा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वडहत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर कर है भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम संकलो असंख कह सिर भार हुए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे ते सिर नाहे जिव परमाए तिव तिव पाहे जीता कीता तेता नाओ विण नावै नाही कोताओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार

उत्तर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग।

तीर्थ तप दया दत दान जी को पावे तिलका मान। सुनिया मनिया मन कीता पाहु अंतरगत तीर्थ मल नाहु। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न हुए। स्वस्थ आत बाणी परमाऊ सत सुहान सदा मन चाऊ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित।

ना कोई, जा करता सिर ठीक औ साजे। आपे जाने सोई, किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आख, एक दू एक सियाणा।

आगास कोड कोड कपाल थके वेद कह निकवात सह सठार कहन कतिबा असलू एक धात लिखा हुए ता लिखी है लिखा हुए विनाश नानक वड्डा याकी है आपे जाने आप साला ही ती सुरत न पाईया नदियां अतः वाह पवह समुद न जानी है समुद सह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हुन विसर है अंत न सिफति कहन नांत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन नांत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकारु अंत न जापै पारावारु अंत कारण किते बिल लाहे।

थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ एवड ऊंचा हु वह कुए तिस ऊंचे को जाने सोए जीवड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप टुटे विकार किते लै लै मुकर पारे किते मू

राख न सकै कुए जी को खाए कि आखण पाए ऊ जाने जितिया मुखाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के जिसनु बख्शे सिव सालाहा नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण मुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे मुल ले जाई अमुल पाए मुल्ला सुमाही अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमुलो मुला क्या न जाय आकाक रहे लिवलाय आखै वेद पाठ पुराण आखै पढ़े करह वख्यान आखै ब्रह्मे आखै इंद आखै गोपी तै गोविंद आखै ईश्वर आखै सिद्ध आखै किते किते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुन जन सेव किते आखै आखण पाहि किते कह कह उठ उठ जाहि इते किते होर करे ताक न सकै के जीवड़ भावे तेवड़ हुए।

अकामे भुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृशय कृषय भगवती चंद्व प्रसाद कथते किया चिज दिशय किया भिज भिषय किया गंज कर्मय किया पंज परमय किया भिज लुकै किया दित सुकै के अवतूत वर्णय के विभूत करने के राजंग प्रभाय के धर्मंग तुझा है के आसुक वर्णय के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मेरे हक है कि पाक बेऐब है कि गय भूल गैब है कि फूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमंग फहीम है कि आकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हामिशुल सलाम है सलीकत मदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है विलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्व अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निश्चिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंगंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमित।

अजय है अजा है भगवती चंद्व प्रसाद कि जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है तो साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी ध्यान दे कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रनाश है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल आलेख है हमेशुल अभेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मत पार छंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभवनाश त्रितर तुरास आ जन बाहु एक सुदाहु ओंकारात कथनी अनाथ खल खंड खयाल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंच जगात आज जन बात अंच अंजगात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कल खंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृतामृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है जबा कृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पावभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सू

सात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगाह अटा अनाथे प्रमाथे अजोनि अमोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग अगंजी अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल प्रणासी अगंजुल अनामे समस्तुल निवासी निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीश न जात बिचारे इते पय तो कहा पय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान।

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पात साई दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मोहे बचावू। सुखी बसै मोरू परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

कोई अवर न त्याऊं, जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जुजू करे हो रक्षा।

जिन कह मन वसिया वाजी शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तीरे साचा नाम मेरा आधारु साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनियाय वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरु विटहु जिस दियां ए वडियाईया कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच सब तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया तुद बा समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया ए सुनो होर थाओ नाही शब्द

आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर है दह दिशिक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आव संत प्यारे हुआ कथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए तन मन धन सब सौप गुर को हुक्म मन्या पाईए हुक्म मन्यो गुरु के रागावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथ्यो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिनेत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिंट गौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहु जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच सुमाले एहु कुटुंब तू जे

भूले ना कीचै, जितंत पछुताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले।

लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिस नौ कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलावहे एहो सुहेला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित हुए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित सो पवित संगत सुभाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विन सहजै सहसा न जाय नह जाय सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाय सहसै जीव मलीन है कित संयम धोता जाय मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाय जी हो मैले बारहो निर्मल जी होता मैली तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा महना उत्तम सो सुने नाही फिर है जो बेतालिया कह नानक जिन सत तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सत समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख हुवै हुवै ता सनमुख सिख कोई जी हो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतरात्मै समाले आप चढ़ सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख हुए जे को गुर ते बेमुख हुए बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होत है कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न

को नदर कर्म हुवे हृदय तिना सुमानी। पीवो अमृत सदा रहो हरंग जप्यो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हार हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया बोलन पै रवानी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ सुमाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया भाउ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता उपाए कह करता आपे हुक्म रताए। हुक्म रताया वेखै गुरमुख सै बुझाए। थोड़े बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु

अमृत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्त्व सार न जानी, तत्त्व सार न जानी गुरु बाजो तत्त्व सार न जानी। तेहि गुणे संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे। जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी, कह नानक सो तत् पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागै। जागत रहण विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मन विसारी है मनो क्यों विसारी है। वड़दाता जी अगन में आहार पहुंचावे, उसनों को पोए न सकी। जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पेलाए, गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया गुण सभी को जे ही करते खेल रचाया। जात सुपाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाऊ दूजा लाया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाऊ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हरे आप मुल कह मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विट्ट हो रहे लोक बिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिस नौ सिर सौ पिया, विचो आप जाए जिस दा जीव तिस मिल रहे। हर वसै मन आए हर आप मुल कह, भाग जिन्ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। रास मेरी मन बन जारा, रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपिहो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी, इहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कह नानका रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कित जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बहुड़ न तृष्ण लागे आए। इहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जिसे आए। कह नानक होर अन रस सा विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जूत रखी, ता तू जग में आया हर जूत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। हर आपे माता पे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जूत रखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभया गुम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नि सखिये, सोग दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे। आपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जुगु, ए शरीरा मेरिया सुजग मैं आए कह। क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया, तुद शरीरा जा तू जग मैं आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जो तरी, हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई। नदरी हर निहालिया एहो विस संसार, तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर कह हर बिन अवर न कोई। कह नानक नित्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो सचै सुनणै नो पठाई, सचै सुनणै नो पठाई शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस मानी, सचल कबिडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सचै सुनै नो पठाई। हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया, तहन एक रूप नव नव नित तिस दंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुपांद रखै वाजा पवन वजाया। इहो साचा सोहिला साचै कर गाव हो गाव ता सोहिला घर साचै, जिथै सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जा तुद भावे गुरमुख जिना बुझावहे। इहो सत्सवना का खसम है जिस बख्से सो जन पावहे। कह नानक सच सोहेला सचै घर गावहे। अनद सुनहु।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाह

जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा। सा विद तुम हर जान हुआ पे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

त्रिपुटाणी अमल किया चारे वेद सचियार पड़े पड़े तीन चार विचार पाव भगत करनी सदाई तौ नानक मोह खुल कर पाए।

रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मनी उपजियो सगले दुख पलायन। रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मनी उपजियो सगले दुख पलायन। रहाओ जो मांग है सोई सोई पावै शिव हर के चरण रसायण। जन्म मरण दूहों ते छूट है भवजल जगत तरायण। खोजत खोजत

0: सुनिहार सतरिया काल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जातारे। मैं मूर्ख की के

अन रस मह भोलाया बिन नामै दुख पाई सत गुर पुरख न भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाए अन रस ला

सब जग बाधिया अवरी का नहीं हुक्म पया। गगै गोए गाए जिन छोटी गली गोविंद गर्भ पया।

तह बूढ़े लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेत वया काया भीतर।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते हैं, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच होंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे, रहमत करे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

शब्द केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस विच सतगुरु जी के दरा राग दी रही पहला मानता ही उपदेश करते हैं ते बहुत सोने सोने उदाहरण देते ने परमात्मा वाहगुरु के नाम विच सुरत नू किवें जोड़ना है उसके नाम नू किवें जपना है किवें श्रद्धा भावना रखनी है ते जिस तक साड़ी पहुंच नहीं है ज्ञान इंद्रियां दी उस तक किवें असी पहुंच सकते हैं गुरु की बख्शिश नाल आओ केदारा राग सरवण करिए।

बेनती कर दें आप जी दे चरणा च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देख ते धनी हन, सरबन सुदानी हन, खालसा पंथ के सृजन हार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवें। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग, एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू हुई सी और इन्हों 2 साल लग गए सन लुधियाने विच। दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए उही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।